0: कूड़गर अथवा हुमला पहला
1: श्याम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सब को सच सुबह।

मानुष खाने करने वाद चुरी बगैंतन गलत आकन कर भ्रमण पूरे ना ओ न भी आवे साथ कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कुड़ बोल कर आहा सरम तरम का डेरा दू नानक रह गया भरपूर मथे टिक्का तेड़ तोती का खाई हाथ चुरी जगत कसा नील वस्त्र पैर होए परवान मिले स्थान ले पूजे प्रा अपख्या का कुट्ठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े आर मत पिटे वे मत पिटे एव अन असाडा पिटे तन फिटे फेट करे मन जुटे चुली परे कहो नानक सच ध्याइए सच खोवे ता सच पाइए पौड़ी चते अंदर सबको देख नदरी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह

0: में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

0: वे सरवण कर रहे सी भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते
1: खेतीबाड़ी

आधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानी और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है। यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में

0: साहित्य सुधा दा समा रहेगा शाम 7:40, 7:50 ते स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लम्हे होएगा। रात 8 बजे जिंदगी हसीन है ते रात 8:15 सुर सरिता प्रोग्राम च अज दे कलाकार होंगे प्रदुमन। रात 9:30 संस्कृत भारती ते रात 10 बजे संगीत दा अखिल भारती प्रोग्राम, ए दोवें सिलसिले सारे दिल्ली केंद्र तों प्रसारित कीते जाणगे। सो जी, ए सी परिचय तहत अज दिन भर प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्राम ते उना दे प्रसारण समय दे बारे च जानकारी।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रिणः, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन

0: आर.एन. रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णं उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति। अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिकासमर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितञ्चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से सी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने मुख खबरां। भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिमी बंगाल दे नवे मुख्यमंत्री होंगे। तमिलनाडु सी जोसफ विजय की अगुवाई वाली TVK पार्टी राज सरकार बनाने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की मजबूती ते सुरक्षा सिर्फ सरहदां दी रक्षा तक सीमित नहीं सगो समाज वातावरण ते इस दे नागरिकां दी सुरक्षा नाल जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय महिला कमीशन ने औरतों खिलाफ घिनौने जिनसी जुर्मां संबंधी मामलों च तेजी नाल सुनवाई सख्त निगरानी ते पैरोल ते पाबंदी दी मांग कीती है। भारत ते सिंगापुर ने रणनीतिक भाईवालां वजों दहशतगर्दी दा मुकाबला करन लई दुबले सहयोग दी महत्ता ते जोर दित्ता है। भारत ते आस्ट्रेलिया विचकार नवी दिल्ली च रक्षा 10वीं रक्षा नीति ते गलबात हुई। पंजाब कर विभाग ने एक संगठित फर्जी बिलिंग नेटवर्क दा सफलता नाल पर्दाफाश करदे लुधियाना दी एक फर्म दे डायरेक्टर नूं वड्डा GST घोटाला करन दे दोष गिरफ्तार कीता है।

20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: इन्हां खास सुनेहां तो बाद सोहणी सवेर प्रोग्राम सुनन वालियां दा फिर तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तुसी पता है अपना कामकाज नालों नाल कर रहे हो, नालों नाल तुसी तैयार भी हो के जिन्हां ने स्कूल जाना है, स्कूल तुहानूं पता ही है छोटे बच्चों जिन्हां की नवी एडमिशन हुई है उन्हां दे स्कूल चल रहे ने, हाले छुट्टियां दा कोई सीज़न नहीं है। हाँ, क्योंकि वड्डियां जमातां दे इम्तिहान ने ते छोटियां दे लई हाले छोटे छोटे इम्तिहान ने, फिर उस तो बाद गर्मी दियां छुट्टियां हो जाणियां ने जिन्हां दा बेसब्री नाल इंतज़ार किन्ना किन्ना नूं रहिंदा है भला, ये जरूर दस्सिओ कदी मौका मिले। तो गर्मियां दियां छुट्टियां की गल्लबात तां हाले नहीं करनी, क्यों? क्योंकि सोहणी सवेर दा समां है ते अज हुण इस प्रोग्राम दे विच समां है अज दे इतिहास दे पन्नियां वल झात मारन दा, ओह पन्ने जिन्हां ने जिंदगी तों बहुत कुछ सिख्या ते फिर उन्हां सिखियां होईयां गल्लां नूं इहो जिहा इतिहास सर्ज दित्ता उन्हां नाल कि साडे लई ओह पूरने बन गए ते उन्हां तों सीध लै के असीं वी अपनी जिंदगी च अगे वध सकदे हां, कुछ नवां कर सकदे हां, कुछ सिख सकदे हां ते होरां दी जिंदगी नूं प्रेरित कर सकदे हां। अज दे दिन की गल करिए तो अज महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती है। महाराणा प्रताप का नाम सुनद्या ही याद आती है बहादरी, आत्म सन्मान, जिन्हों ने आज़ादी के कोल के दौरान बहुत कुछ एक ग्रेटेस्ट वॉरियर किंग के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया सुनहरी अखरों के विच। उन्होंने जीवन के नाल जुड़िया हुई बहुत सारिया गल्ला ने ते थानू पढ़िया होना तुसी स्कूलों के कॉलेजेस दे विच ते अज भी खास तौर पर कई तरह के समागम करवाए जा रहे हैं उन्होंने जीवन नूं जीवन तो कुछ प्रेरणा लै सकण लई बहुत सारे उपराले किए जा रहे हैं। इस तों इलावा अज दे दिन की गल करिए ते अज UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक जिहड़ा 8 तो लैके 12/5 यानी 12 मई तक मनाया जा रहा है। इस दिन नूं मनाउण दा मकसद की है, कदी सोचिया है? तुसीं कहना हाँ बिल्कुल सोचिया है। रोड सेफ्टी दिहाड़ा मतलब हफ्ता जिहनूं कह रहे हां आपां, इस हफ्ते दे दौरान खास तौर ते इहदी शुरुआत कदों ते किन्ने कीती सी उहदे बारे जे थोड़ी जी गल करिए ते उह गल बहुत खास है। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइजेशन वल्लों इस दी शुरुआत कीती गई सी, कदों कीती गई सी इहदे बारे वी गल करांगे। ते इह तों इलावा जे गल करिए रोड सेफ्टी सप्ताह दी तां मई दे महीने च इह डेट फिक्स है, मनाया जाता है 8-14 मई के दरम्यान। तो यदा मकसद एको ही है कि सड़कों पर चलना सुरक्षित होना चाहिए है। जे असी गड्डिया कारा चला रहे हैं तो रोड सेफ्टी के छोटे वहीकल जोड़े स्कूटर साइकल या पैदल चलण वाले लोग ने उन्होंने भी सड़क पर चलना सुरक्षा का माध्यम होना चाहिए है। सो इस अलावा जिंदगी दे विच जिंदगी बड़ी कीमती है ते कई बार असी अपनी खुशी या बहुते दुख विच जदों असी सड़क ते जाने आ, जदों खुश हुन्ने आ उदों लाउड म्यूजिक हुंदा है, जदों उदास हुन्ने आ उदों रोण वाला हुंदा है, है ना, सारियां चीज़ां साडा

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

एक जागदा सूरज, चढ़दा सूरज कह सकते हैं, वह सूरज जिहड़ा कदी नहीं डुब सकता। अपने संगीत के जरिए, अपने साहित्य के जरिए, गीतांजलि के जरिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना के जरिए देश नूं बहुत कुछ दिता। नैशनल एंथम जन गण मन ते अमर सूनर बांगला, बांग्लादेश का एंथम उन्होंने दिता। यो शख्सियत जिन्होंने जिंदगी बड़े सौखे जे तरीके जीवन का तरीका दसिया। अज उन्होंने जन्म दिहाड़ा है, उन्होंने याद करते हुए बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ किया साहित्य जगत के उन्होंने, समाज सुधारक के रूप के एक आर्टिस्ट के तौर पर। एक रविंद्रा अपने संगीत के जरिए 2000 तो वध गीत जड़े ने उन्होंने रविंद्र संगीत के आर्काइव के तरीके नाल जुड़े हुए ने, समझे हुए ने। उस महान शख्सियत नूं शत शत नमन करते हैं। अज के इतिहास के पन्नियां दे विच एक होर दिन भी है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले का भी अज जन्म दिहाड़ा है। उस महान शख्सियत नूं भी असी याद कर रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने दिता सानू, तो फिर साडा फर्ज बनता है उन्होंने सिर्फ अज के खास दिन ते तां याद करिए करिए, पर उन्होंने दिते हुए सुनेहियां नूं, उन्हां दी दित्तियां होईयां सेधां नूं असी अपने जीवन के रूप च अपना के अगे वधीए, ते फिर अगे वधदे वधदे जिंदगी लई दूजियां लई प्रेरणा स्रोत बनीए, ते एक हवा वांग उन्हां दी याद जिहड़ी है उह साडे नाल हमेशा जुड़ी रहे। आओ इस प्रोग्राम च एक सोहणा जिहा गीत सुणदे हां, ते बाकी दीआं गल्लां उस तों बाद।

0: ਲਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी।

0: न्यूज कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMM के पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।

0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरेह बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की।

0: है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज। पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC Under-17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रहे नशीले पदार्थों के खतरे की स्थिति से चिंता प्रकट की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज वालों नशीले पदार्थों नाल नजिठण के तरीके विच एक बुनियादी तब्दीली की मांग की ते नाल ही कहा कि मनुखी नुकसान चिंताजनक ने। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस जॉयमाला बागची दी बैंक ने एक ताज़ा घटना का हवाला दिता जिस विच एक माँ शामिल सी जिसने अपने सारे पांच पुत्रां नूं नशियां दी लत कारण गवा दिता। बैंच ने कहा है कि नशीले पदार्थों का खतरा एक अजिहे बिंदु ते पहुंच गया है जिथे केंद्र सरकार की दखल अंदाजी जरूरी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने राज अते केंद्रीय एजेंसियां दोवां नूं नशीले पदार्थों के खतरे नूं खत्म करन दे टीचे वल काम करन लई कहा। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत ईयू सम्मेलन के नतीजों की शलाघा

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते पेश है महक पंजाब दी प्रोग्राम। आज दे इस प्रोग्राम च पंजाबी फिल्मां चो गीत ने। पहला गीत जिहड़ा तुहानू सुनवाण जा रहे हैं वो है फिल्म जवाक दे विच्चों। आवाज़ है निमरत खैरा दी।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया से

0: कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: वीडियो लाइक करन ते पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: फसिया।
4: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। RBI कहंदा है
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।

0: इस प्रोग्राम विच जानकारी दे नाल नाल गीत संगीत मनोरंजन बहुत चंगा लगदा है। प्रोग्राम हैलो फरमाइश तां मगजलंधर पैंदी वास्ते विड़े चिट्ठियां मिठियां तुहाडी फरमाइश चंगे चल रहे ने। झांजरां दी बोर फरमाइशी हफ्ते विच दो दिन कर दिता जावे तां ज़्यादा श्रोते इस विच शामिल हो सकते ने।
1: जी असल विच गल ये है कि सब तो पहला तो शुक्रिया अदा करते हैं जी इस मुहब्बत वास्ते। दूसरा झांजरां दे बोर दे बारे च इन्होंने कहा है, असल विच जिहड़ा साडा वसदे वेड़े प्रोग्राम है इहदे च पूरे हफ्ते च नियमित कीते गए ने वख वख सिलसिले जिहड़े बहुत जरूरी ने, और क्योंकि आकाशवाणी जिहड़ा है वह पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, सो उस इमेज नूं निभाउंदे होए भी बहुत सारे प्रोग्राम उलीके जांदे ने, इस करके फिलहाल संभव नहीं है। हाँ, फरमाइश नाल संबंधित होर बहुत सारे सिलसिले ने जिहड़े चलते ही रहिंदे ने सवेर तो लैके शाम तक, तुसी उहनां विच भी हिस्सा लै सकते हो। बहुत शुक्रिया अरजाक मोहम्मद जी और बाकी सारे साथियों का इस प्रोग्राम नूं चिट्ठी लिखण वास्ते।
0: जी अगले खत जो असीं जिक्र करन जा रहे हैं ना, इस खत दे विच जवाब तुहानूं नहीं मैनूं लगदा कि मैनूं देना पैणा।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: जी,
0: क्योंकि इह पुछ रहे ने कि पूनम जी पिछले काफ़ी समय तो क्यों नहीं आ रहे
1: जी।
0: ये साथी ने राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गोविंदगढ़ माजी वाला, श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान तो।
1: मतलब अज वो दिन है जिस दिन पूनम जी को पूरी तरह नाल एक्सप्लेनेशन ले जाएगी
0: जी कहने सानू उम्मीद है कि इस बार दे तुहाडे चिट्ठी मिली प्रोग्राम विच परम जी जी दे नाल पूनम जी जरूर सांझ निभाउणगे।
1: थोड़ा जिहड़ा यकीन सी वो 100% ही सच्चा हो गया जी।
0: देखो जी दिल नूं दिल दी राह हुंदी है, ते तुसी इन्नी शिद्दत नाल याद कीता कि असीं हुण प्रोग्राम च शामिल रेगुलर हो ही रहे हां ते होया करांगे वी।
1: बाकी एक गल होर दस्सदा कि
0: जी
1: पूनम जी जेडे ने ना टुटेजा जी थोड़ी चिट्ठी नूं प्रिंट होने तो पहला तय हो चुका सी कि अज पूनम जी होणगे प्रोग्राम दे विच जी।
0: जी शुक्रिया जी याद करन दे लिए। बाकी कई वारी कुछ रुझेवे इहो जिहे हो जांदे ने कि असीं तुहानूं नहीं मिल पाउंदे, पर फिर वापस मुड़ आउंदे आ तुहाडे कोल।
1: जी
0: अगे लिखते ने कि कई बार इंज हुंदा है कि दोहां तो बिना, दो एंकर्स तो बिना प्रोग्राम सुनने विच उन्ना आनंद नहीं आउंदा। इंज करिया करो कि जदों कोई एक एंकर शामिल नहीं हुंदा तो उसी जगह दूसरे नूं लै लिया करो। कहिंदे कि वीरेंद्र जी नूं भी लै के आया करो। ते एक शिकायत है परमजीत जी कि
1: जी
0: पिछले 3-4 हफ्ते तो सब दी पसंद प्रोग्राम पेश नहीं हो रहा। नाटक दी वजह करके साडा सुझाव है कि सब दी पसंद प्रोग्राम नूं पहले वाले दिन बुधवार नूं कर दिओ।
1: जी
0: ते एक होर सुझाव है कि तुहाडी फरमाइश रात 10:30 बजे प्रोग्राम नूं हफ्ते विच 3 वार कर दिओ। बुधवार तां है ही, एतवार एक भी कर दिओ। साडा कहण दा मतलब यह है कि हफ्ते विच रात नूं घट तों घट 3 वार तुहाडी फरमाइश होनी चाहीदी है। बाकी आखिर दे विच ये कई प्रोग्रामां दा जिक्र कर रहे ने जिन्हां नूं पसंद आए ने।
1: सब तो पहला तो पसंद किए जाने वाले प्रोग्रामों वास्ते शुक्रिया। जिहड़ी तुसी बुधवार की फरमाइश का जिक्र किया है हफ्ते च ज़्यादा दिन करन वास्ते वो फिलहाल संभव नहीं है, उहदे वास्ते माफ़ी चाहवांगे। और जिहड़ी खास करके गल तुसी लिखी है ना जी कि अगर एक साथी छुट्टी ते आ ते उहदी जगह किसी होर नूं लैया करो, ये खास करके इशारा मेरे वाला, क्योंकि मैं समझ रहा सी कि पूनम जी की गैर मौजूदगी जिहड़ी है उहदा अहसास नहीं होण देंगा, पर पूनम जी देख लो लोग तुहानूं मिस करदे ने सुनण वाले, है ना। सो इस करके माफ़ी चाहुंदे हां जी, अगली बार कोशिश करांगे जी कि इस तरह की शिकायत जिहड़ी है वह दूर की जा सके।
0: शुक्रिया जी खत लिखण दे लई। अगला ईमेल जो प्रोग्राम का आखिरी ईमेल भी है अज, ये है जी रमन वर्मा का
1: जी।
0: ये लिखते ने दिव्यांश वर्मा, रमन वर्मा, अमन वर्मा, ये नेड़े बस अड्डा पिंड बुरज हनुमान फाजिलका तो लिखते ने,
1: बुरज हनुमानगढ़ जिला फाजिलका
0: जी। कहते कि गुरु अमरदास जी के प्रसंग सुने, इसके लिए आकाशवाणी जलंधर का दिलों धन्यवाद जी। प्रसंग सुनाने के लिए इंटरनेशनल मजदूर दिवस से नेहा शर्मा जी ने बहुत वधिया जानकारी दी। सबरंग प्रोग्राम विच कलाम सुने बहुत वधिया लगा। रूबरू प्रोग्राम विच पंजाबी रंगमंच नरिंदर सागी की इंटरव्यू सुनी। नाटक होया देस पराया सुनिया ते दिल नूं छू गया, सचमुच अखां नम हो गई नाटक नूं सुन के। दिलों तारीफ ते दिलों दुआवां जी सारे ही पात्रां नूं। सांझ प्रोग्राम विच बाल विआह ते कानून बारे बहुत ही विस्तार सहित जानकारी दी गई मैडम निर्मल रंधावा वल्लों, वधिया जानकारी सी। देहाती प्रोग्राम विच डॉक्टर मैडम हरप्रीत कौर दालां दी काश्त बारे वधिया जानकारी दे के गए, धन्नवाद। वीरवार नूं 12:05 डॉक्टर बेअंत सिंह हड्डियां दे स्पैशलिस्ट गोडे बारे बहुत ही वधिया जानकारी दे के गए, बहुत ही वडमुली जानकारी मिली। आकाशवाणी दा तहे दिलों धन्नवाद। जीतला लहरी दी आवाज़ विच माता दीआं भेटां सुणियां चंगीआं लगीआं। साडी माता जी कृष्णा राणी वर्मा वल्लों कहिंदे कि आकाशवाणी जलंधर दा दिलों धन्नवाद है भेटा सुनाउण दे लई। ते 90 साल आकाशवाणी तहत गलबात सुनी डॉक्टर लखविंदर सिंह जौल हुणा दी, बहुत ही आनंद आ गया इस खास इंटरव्यू नूं सुन के। रंगली धरती प्रोग्राम दे विच हरदेव सिंह लालाबाई दी आवाज़ विच प्रसंग सुने एतवार नूं, बहुत

लेंथ दिन दी लंबाई दिन दा किन्ने चिर घंटे सूरज रहिंदा है ए डिटरमिन करदी आ। इंटरनली ये हैगा कि उन्हां दे जिहड़े प्रजनन अंग ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने उन्हां दी स्टेट की आ, क्योंकि एक्सपैरिमेंट्स ने वर्ल्ड वाइड शो किया है कि जे इन्हां पंछियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव इन्होंने करके देखे ने एक्सपैरिमेंट्स के विच तां उह पंछी कैप्टिविटी विच माइग्रेट नहीं करते, उन्हां चों इंस्टिंक्ट नहीं हुंदा। सो ये भी कारण ने। इस तो इलावा एक चीज़ बहुत मोटे तौर पर समझन की लोड़ आ, जदों कि पंछी अपनी वापसी करते ने दक्षण तो उत्तर वल, उस टाइम सब तो पहला जेडे कि अडल्ट मेल होंदे ने उह पहला पहुँचते ने अपनी नेस्टिंग साइट पर, उस तो बाद आती है अडल्ट फीमेल्स का ग्रुप पहुँचता है, तो तीजा ग्रुप वो हों जिद छोटे बच्चे ने जोड़े कोई साल के ने जो साल के ने हजे अडल्ट नहीं है वह पहुँचते हैं। पर यह तो रिवर्स होंगे, ये तो उल्टा वो हों कि जो उन्होंने दक्षण वल जाना हों उदों पहला की हों छोटे बच्चे पहुँचते हैं, उस तो बाद अडल्ट फीमेल्स पहुँचदिया ने, उस तो बाद अडल्ट मेल्स पहुँचते हैं।

0: गाना केड़ा सुनना है सर?
1: जी
0: गाना केड़ा सुनोगे?
1: गाना मेरा बस सूरज भर मेरा महबूब आया है।
0: ला जी, बिल्कुल थोड़ी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। कॉल दे लई बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा।
1: थैंक यू सो मच।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: ਲਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 0181 3473 ਹੈ ਨੰਬਰ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
2: ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
2: ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ।
1: ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? महाराष्ट्र से बात कर रहे हो? अच्छा, तो गाना कौन सा सुनना है?
2: फिल्म का नाम है कभी कभी। और गाने तो बोले मैं पर्दों पर का शायर, पर्दों पर मेरी जवानी है, पर्दों पर मेरी हस्ती है, पर्दों पर मेरी जवानी है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तनुश्री।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हो रहा है। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में पहुंच गए हैं। इससे पहले वो एक भव्य रोड शो में शामिल हुए। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल हैं। इससे पहले कल श्री अधिकारी को पार्टी विधायक दल का निर्विरोध चुना गया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त होगा। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा का केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। हिंद महासागर संवाद कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन

0: सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रम और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विश्व मामलों के परिषद और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय के सहयोग से इस संवाद का आयोजन किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। गुजरात और पश्चिम राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स, FM 103.6 मेगाहर्ट्स अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। साडे स्रोते वेव्स ऐप राही भी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते ने ते नाल दे नाल न्यूज ऑन एयर ऐप दे जरिए भी ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ।

नहीं लगता। श्री फतेहगढ़ साहब तो पहुंचे ने रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर और मक्खू तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी ते मनीष बजाज भी हाजिर ने। अगली फरमाइश पिंड वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह सिद्धू, पूरा सिंह गहलोत, राजा सिंह वड़िंग और बलजीत सिंह। अगली फरमाइश लैके हाजिर ने जी पिंड बसौली नेड़े लालरू मंडी तो सूबेदार साधु सिंह, पट्टी आरव आरव पट्टी, शकीला पट्टी, कुलवंत काला और टीनू पट्टी और सारा ही इन्हों का परिवार तय दिल तो सानू शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जबकि शुक्रिया अदा तो साढ़े वालों बनता है। और अगला सुनेहा साढ़े तक पहुँचा दर्शनगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव साइना ते निवान शर्मा। शेरपुर थाना जिला संगरूर तो पहुँचे ने जी मिंटू सप्पल, अमनजोत सिंह और बिदरखेड़ी तो परमजीत सिंह पुरबा तुरी। अगले सुनेहे नाल हाजिर जसपाल भारती, वीना भारती, सुरिंदर, मनदीप, डिंपल, युवराज ते शिवाय। और ये पहुँचे कितों ने साउथ एवेन्यू अबोहर तो मेन बाजार मंडी लादुखा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो वरिंदर कालरा, रेखा प्रीक्षित और प्राची ढींगरा ते सारा ही कालरा परिवार पहुँच चुका है जी। लो जी अगले सुनेहे च पहुँच गए ने। हुन इन्ने खूबसूरत सुनेहा नाल आओगे ते बार बार मैं तो यही कहांगी कि तुसी अपनी एक पछाण छोड़ जाते हो और पछाण है जी दिल, मोर, फुल, रुख ते खुशबू अपने आप महका मारती है। लो फिर पहुँच गए ने जी चकला बाजार समाणा तो पप्पू राजा खुश दिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू स्माइल खुश दिल, हसमुख लाल जिंदल, संजीव सुनीता, बंटी जिंदल, आरजू महक खुश दिल ते सारा ही खुश दिल परिवार। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी हरजीत कैंथ, मौजी कलोनी, डाबा लुधियाना तो पहुँच गए ने जी। और मेन बाजार मंडी लादुखा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो अनमोल चावला, दीपिका किरना चावला वारिस ते चावला परिवार हाजिर है पिंड कबूल शाह खुबन जिला फाजिलका तो। वधावा सिंह, बलकरन, तन्नू, पवी, जस्सी ये पहुँच गए ने। हमेशा लिखते ने कि सानू तमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम लाइव सुन के बहुत ही वधिया लगता है। शुक्रिया जी बहुत बहुत। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੀਤ।

तो अपने साथी मैंबर भी लैके पहुंचे ने मनप्रीत सिंह, बलजिंदर सिंह ते परमजीत पुरबा, सुखबीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनप्रीत सिंह पिंड छाजली जिला संगरूर तो ये हाजिर ने, और फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया, पिंड इस्लाम वाला डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो सोन लाल राठी, ओम प्रकाश, शगुन राठी, लवकुश वर्मा, छतरपाल सिंह, रजिंदर सिंह, बाबू सिंह, काका पट्टी, पिंड कमाल वाला तो गुरमेज सिंह विरक। बिल्कुल जी, धन्यवाद तुहाडा। और अगले सुनेहे नाल पहुंचे ने जी पहाड़गंज मुल्तानी टांडे तो अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक ते कैथल हरियाणा तो मधु नायक, ये भी पहुंचे ने। पिंड कबूल शाह खुब्बण जिला फाजिलका तो सत श्री अकाल भेजी सानू बलतेज, नवजोत, हरमन, हैरी, हैप्पी ते इन्हां दे सारे परिवार ने। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया तो ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर तो पहुंचे ने प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। पिंड धौला किंगरा नेड़े मलोड़ तो जगतार सिंह जग्गा, चिंदरपाल कौर, मनदीप सिंह, कुलदीप कौर, बब्बू राणी, नीतू राणी, रमनदीप कौर मलोड़ पिंड तो, जगतार गिल, कुलवंत गिल ये पहुंचे ने जी। अगले सुनेहे नाल हाजिर ने वीपीओ मिड्डू खेड़ा डिस्ट्रिक्ट श्री मुक्तसर साहब तो राम प्रताप, ज्योति, सुमन ते मनीषा। और अगले सुनेहे नाल हाजिर ने जी राजस्थान वाले भी पहुंच गए ने श्री गंगानगर तो, पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो हाजिर ने मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति ते भूमिका अरोड़ा। और अगले सुनेहे च सदर बाजार कुरावली तो अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार ते सोनम वर्मा ये पहुंचे ने। गांव कमंडिया सूरतगढ़ तो जगदीश टुकिया, प्रमिला, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु, शिवम टुकिया ये भी हाजिर ने जी। पिंड चौधरी वास हरियाणा तो मांगे राम सतौड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभ्य और यश कुमार ये भी हाजिर ने। टालीवाला बोदला जिला फाजिलका तो अमीर चंद, नवदीप चतरथ, अर्नव चतरथ, लाजवंती ते अनीता राणी। पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तो कृष्ण लाल, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा राणी, शैलेंद्र ये पहुंचे ने। मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सप्पल, प्रभजोत ते मनजोत सप्पल। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत ये भी पहुंचे ने। दस दिए जी ये जेड़े थमक जलंधर पेंदी प्रोग्राम है इस विच तुसी पंजाबी गीतां दी फरमाइशां ही पूरियां करवा सकते हो। और अगले सुनेहे नाल हाजिर है मजनू का टीला तो कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग, आकांक्षा, गुड़िया माही मलिक और इशिता अरोड़ा। सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा, रीतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका तो शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। करणवीर सिंह पॉल पूरे ही अपने परिवार दे नाल सराभा नगर जलंधर तो सानू आकाशवाणी दे 90 साल पूरे होण ते लख लख वधाइयां दे रहे ने। लो जी, बहुत शुक्रिया जी तुहाडा। और अगले सुनेहे नाल पहुंचे ने जी साडे कोल न्यू गुरु रामदास कलोनी गुरदासपुर तो प्रीतम दास, सत्या देवी, पोतरी वान्या ते पोतरे अरमान, अविताज कनेडा ते काका दियाविक अंगुराना ते सारा ही अंगुराना परिवार पहुंच चुका है जी आकाशवाणी दे वेड़े। और पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मक्कड़, मुखी राम जी, मनजीत तनेजा और पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले स्नेहे नाल हाजिर ने पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी तो जगराज सिंह कणकवालिया, गंगा राम, राजेश्वर सोनू, मोहन लाल, सुखदेव सिंह, अरविंद कुमार ए वी जलंधर तो। और अगले स्नेहे तो हाजिर जी सादुल शहर राजस्थान तो राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक ते बलवीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश तो ये हाजिर ने। तुहाडे सारयां दी

हाँ जी हाँ जी, तुसी की कर दे जे, असी ते तुहानू याद ही कर रहे हाँ। तुसी की कर रहे हो? तुसी रेडियो सुन रहे हो, तुसी साडा प्रोग्राम धमक जलंधर 35 सुन रहे हो, ते नाल दे नाल लुत्फ उठा रहे होवोगे, या चाह पी रहे होवोगे, या नाश्ता पानी कर रहे होवोगे, ते साडियां भैणां तुहाडी खातिरदारी कर रहियां होणगियां, या फिर तुसी कम्मां कारां तो साडे प्रोग्राम सुन रहे होवोगे। लो फिर अगले सुनेहे नाल हाजिर, माधोपुरी लुधियाणा तो सुरेंद्र शर्मा, सीमा शर्मा, प्रिंस शर्मा ते सारा ही शर्मा परिवार साढ़े कोल पहुंच चुके ने जी। लो जी, गुलाब दे फुल्लां दी खुशबू आ गई, ते कौन पहुंच गए ने नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका तो? रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। और परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा तो इंजीनियर अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर, अनमोल सिंह ते पवनीत ग्रोवर, और अपने परिवार पूरे परिवार नाल पहुँचते हैं ब्रैम्पटन कनेडा वालों नू भी नाल लैके। निखिल भाटिया, नीति भाटिया, महरीन भाटिया ये भी पहुँच चुके हैं जी। बहुत बहुत

रोहित, अर्चना, चित्रा, अक्षु खिलेरी और ए ने जी हरिपुरा अबोहर। तो शुक्रिया जी। अगला सुनेहा साढ़े तक पहुंचाया गांव फ्रांसी हिसार तो राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। लो फिर पेश करन जा रही हाँ पसंद तुहाडे सारयां दी। भी काफ़ियां ने आसा सिंह मस्ताना दी पसंद दसी ते कुछ कहिंदे जी सुरिंदर कौर नूं भी सुनना चाहुंदे आ, ते फिर दोनों नूं असीं इकट्ठे ही मिला दित्ता ते गीत भी बड़ा सोहना है। आओ फिर इकट्ठे मिल के सुनदे आ, होर खूबसूरत लगेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुन।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट

0: नहीं रुको, ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: हुणे तुसीं सुन रहे सी फरमाइशी गीतां दा प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले दिन दे 12 बज रहे ने, आओ सुनदे हां हिंदी विच समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
4: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत और अखंडता रक्षा करिब।
3: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट

0: आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: क्या बात है, बोलियां सुन के ना नचनू दिल कर आया। ते वाकई कहिंदे जिहड़े गीत हुंदे आ इह साडे मन नूं खुश कर देंदे, साडी रूह दी खुराक हुंदे ने। ते इक गल होर दसां ज्योति,
1: जी
0: साडी इक खुराक होर भी हुंदी है,
1: जी
0: ओह हुंदी है माँ। माँ धरती दे उत्ते इक अजिहा शब्द है
1: जी
0: जिस दा ना कोई भी कहिंदे तोड़ ही नहीं है, ठीक है। ते कल असीं मातृ दिवस मनावांगे, लेकिन उस तों पहलां
1: जी बिल्कुल जी
0: आपां
1: कल
0: एक गीत सुन

0: बिल्कुल जी, कल मातृ दिवस है। और देखो, तुसी गल माँ दिवस की कीती है, तो पहला माँ दिवस दी सांझ जरूर असी अपने श्रोतिया ना पावांगे। कल 10 मई का दिन है और माँ दिवस है, और कल का दिन कह लो असी मावां नूं समर्पित है। और अलका जी कहिंदे कि माँ दी थां जिहड़ी है ना, वो कोई नहीं लै सकता,
1: कोई नहीं ले सकता।
0: चाहे पूरी दुनिया च असी कितें भी चले जाइए, पर माँ वर्गी ठंडी छां जिहड़ी है वो कितें नहीं मिलती।
1: बिल्कुल जी, कहिंदे माँ अपने बच्चों लई अपनी हर मुश्किल जिहड़ी है वो सहिंदी है, बिना किसी सवाल तो, बिना किसी स्वार्थ तो, बिना किसी मतलब परिणाम तो। उन्हें नहीं लगता कि इस चीज़ का की अंजाम होएगा कि नहीं होएगा, बस उन्हें अपना बच्चा दिखता, बच्चे का सुख दिखता, वो खुशी दिखती है, वो वास्ते वो सब कुछ करने लिए कुर्बान हो जाती है। और एक बच्चे वास्ते वो सारी दुनिया, वो सारी कायनात वो माँ होंगी है।
0: बिल्कुल। और कहते कि कोई सच्चा प्यार करने वाला देखना है ना, तो बस एक नज़र अपनी माँ को देख लो, क्योंकि माँ का जड़ा प्यार हुंदा है ना, वो निस्वार्थ हुंदा
1: बिल्कुल
0: है ना। और अलका जी, एक गीत दी फरमाइश जड़ी है सुरेंद्र कौर ते प्रकाश कौर दे गीत दी आई है, और असी मावां नूं समर्पित एक गीत जड़ा है अपने श्रोतियां नूं जरूर सुनावांगे जी। ये फरमाइश आई है गुज्जरपुर कलां नवां शहर तो, खुशहाल सिंह मल, सुनीता रमन पूजा, त्रिशन रमित गुरनीत ते अमित, अजीत नगर मलोट तो, छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर, रौनक दीप कौर ते पूरा परिवार है जी। और अलका जी, तुहाडे को भी बहुत सारे खत ने।
1: खत तो बहुत ने जी, तो मैं फटाफट पढ़न लगी हाँ। पहला है लोहगढ़ ठाकरा वाला फिरोजपुर तो, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरमान सिंह, पोतरा गुरनूर सिंह, बठिंडा रोड डब वाली तो, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तो इन्हों के बहुत सारे दोस्त, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, हार्दिक, निहारिका ते वंश बत्ता। ते इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश ते सुनदे आं सुरेंद्र कौर दा एह गीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समा

0: समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जंदी आखरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: हेलो,
2: नमस्कार। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
3: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: जी, सुरिंदर कौर ते डोली गुलेरिया गुलेरिया दे गीत तो बाद ते कुछ संदेशां तो बाद असी फिर वापस आ गए। प्रोग्राम चल रहा झांजरा दे बोर
5: और बहुत सारिया फरमाइशा अजे भी साढ़े कोल पईयां ने, बहुत सारे खत ने और अगली फरमाइश फटाफट पढ़ दिंदे आ जी। नहर किनारे ढाणी फतेह वाली तो आए ने जी राम सिंह रपाल, खुशदीप कौर रपाल ते नसीब कौर रपाल, मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मुनीश बजाज, ककमौर माजरा जिला कैथल हरियाणा तो रमेश कुमार लोध, संतोष राणी अंकुश लोट, अंकिता लोट ते छोटा बच्चा अनुज लोट, अटवाल नगर वड्डी हैबोवाल लुधियाना तो ने जी बलदेव सिंह मल्लड़ चौड़ा, बहादुर सिंह रोशन लाल, अजीत सिंह ते इना दे बहुत सारे साथी
4: जी। जिला फाजिलका पिंड पंगला तो मोहन सिंह, सरदार गुरप्रीत सिंह, सरदार सुखप्रीत सिंह चौहान, रवनीत कौर चौहान ते चौहान परिवार, पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर रेखा, गगन सोनी, सीता ते गीता, मलोड तो कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, जिला मुक्तसर पिंड तो मोहला तो पाल गिल, गुरदयाल गिल, साधु गिल, दिशा मोहला, दरखत दर्शन बराड़ ते मलकीत कुड़ियाणा। इन्हों सारे दी मिली जुली फरमाइश ते सुनदिया जी मास्टर सलीम ते गुरलेज अख्तर दा एक गीत।

0: जी, जो ती
1: जी
0: कहिंदे कि खत जदों कोई लिखदा ना, ते मैं पहला भी गल कीती सी, बड़ा अपना खास जेहड़ा की कहिंदे हुंदे उहनूं कीमती
1: अपनेपन
0: समां कढ के, है ना,
1: जी
0: फिर लिखदा खत। ते उहनां ने बड़े ही सुंदर शब्दां दे विच खत लिखिया है, योग नगर बुढलाला तों, नरेंद्र मेहता, वरिंदर मेहता, गिरिराज मेहता, सिमरन मेहता, हनी मेहता, ते कहिंदे जी इहनां दे बहुत सारे दोस्त। ते एक खत होर है, इहनां नूं मैं गुजारिश करूंगी कि थोड़ी जिहा ना हौली हौली आराम नाल लिखिया करो। सानू कई वारी ना नाम समझ नहीं आते, तो असीं नहीं चाहते कि तुहाडे नाम असीं गलत पढ़ दईए। एक खत है जी, पिंड हौला वाली रानी रूप रानी मानवी रूहानी किरना रानी ते इन्हां दा पूरा परिवार। ते एक खत है जी, मखू तो आर के बजाज बिल्ला ते मोनू बजाज।
1: और एक हथ है जी महज के नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति रानी ते गुरमन्नत होना दा पिंड खैरका सिरसा तो इंदरजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन ते हनी लोट और हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो आए ने जी रसाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान ते जिशान खान और ये सुनना चाहते ने शमशाद बेगम की आवाज़ च गीत ते अलका जी फिर की करिए असी
0: सुनावांगे जी, फरमाइश होएगी तो जरूर सुनावांगे। तो
1: बिल्कुल जी
0: सुनदे
1: सुनदे
0: शमशाद बेगम दी आवाज़ से गीत।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एन एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
0: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा

सभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित किए जाण वाले प्रोग्राम ते उन्हां दे प्रसारण समय दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 तो 2:15 तक प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समय ते प्रसारित कीतियां जाणगियां।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक

0: निदेशक क्षेत्रीय समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जल्दी आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सह जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: की के है तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसी नाल सांझी ना करो।
2: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ, ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ, ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨਮ ਚੋਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੁਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸਮਾਇਲ ਦਰਬਾਰ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: फौजी वीर अली प्रोग्राम आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो पेश कीता जा रहा है। 1:40 होने जा रहे ने। कुछ ही पलां च तुसीं सुनोगे पंजाबी खबरां ते 1:50 ते उर्दू च खबरां सुनोगे। ठीक 2 बजे फिर हाजिर होवांगे फौजी वीरां लई कुछ होर गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦੇਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ TVK ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੋਸਫ ਬਿਸਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ NS ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਮਣੀ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ CDS ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुविंदु अधिकारी मगरी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वजरा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना

प्रश्नों का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसा से मुलाकात की और बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमानी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सिक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमत हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचीशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां AIR.com जां news.onair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: फौजी वीरो, इस गीत दे नाल ही अज दे इस प्रोग्राम नू खत्म करन दी मैनू यानी दीपाली नू दे दियो इजाजत। जय हिंद। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
2: ਨਮਸਕਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी।

0: टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: अमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। अमी ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

0: लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ. जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव

0: मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 854 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए ते नाल दे नाल वेव्स ऐप दे जरिए भी सुन सकते हो। रंगली धरती, रंगली धरती प्रोग्राम च अज दे गायक कलाकार ने राजबीर कौर कैंथ। आओ सुनदे आ

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लैके मैं तुहाडा दोस्त ते होस्ट क्रांति के शर्मा हाजिर हाँ तुहाडी सेवा दे विच। अज मैं जिथे तुहाडियां चिट्ठियां पढ़ांगा ते नाल दी नाल तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करांगा, उत्थे नाल दी नाल कुछ गल्लां मैं तुहाडे नाल दिल दियां भी सांझियां करांगा। दोस्तों अज मैं गल करांगा साडे समाज दे चौथे स्तंभ मीडिया दी। जी हाँ, मीडिया भाव एक माध्यम जो समाज विच वापर रहे वर्तारे नूं आम लोगों तक पहुँचाता है। खबरां दे रूप विच सरकार दे कम्मां ते सोसाइटी विच वापर रहियां घटनावां नूं आम लोगों तक पहुँचाता है। अज मैं गल करांगा मीडिया दे वख-वख प्लेटफॉर्म्स भाव सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक्स मीडिया दी, ते इन्हां दा साडी जिंदगी ते की प्रभाव है, इस बारे मैं तुहाडे नाल गल करांगा। पहलां तुहाडे मैं कुछ खत पढ़ लिए, तुहाडियां फरमाइशां देख लिए, तुहानूं किन्ना किन्ना ने सानूं दोस्तां ने फरमाइशां भेजियां ने। सो जिहड़ी सानूं पहली फरमाइश आई है, ये आई है गांव हीरा हरिपुर अबोहर पंजाब तो महेंद्र विश्नोई, वेद प्रकाश विश्नोई, अमित विश्नोई, अजय विश्नोई, ज्ञान विश्नोई। अगला सानू खत आया जी गांव गोविंदगढ़ माझीवाला श्री करनपुर राजस्थान तो राजू टरेजा खुशदिल, उर्मिला टरेजा, गुड्डू जिन्नू मन्नू, आदित्य भूमि, राखी अमृत बड़वाल, शिव सेठी करनपुरी, स्पाई स्माइल टुडेजा। अगले सानू जिहड़ा खत आया है वह आया है जी अलीका तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी। अगला सानू खत आया जी बनवारी जयपाल, विमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष दिशा सुशांत, विक्रम जयपाल। ये सानू खत आया है जी रायण तो। अगला सानू खत जिहड़ा आया है वह आया है जी गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद अते पोत्रा गुरशब्द। इन्होंने किसी भी गीत की सानू फरमाइश की है, तो इन्हों सब की मिली जुली फरमाइश के उत्ते आओ तुहानू सुनांदे हाँ ये प्यारा जिहा गीत जिसनों आवाज़ दिती है सरबजीत कौर ने। आओ सुनते हाँ ये प्यारा जिहा गीत।

सो ये बड़ा ही खूबसूरत गीत सुनिया रणजीत राणा की आवाज़ में। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां अपने दोस्त होस्ट क्रांति के शर्मा दे नाल। सो गल कर रहे सी मीडिया की, तो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया जां सोशल मीडिया ते खबरां प्रसारित करन वालियां नूं भी जिम्मेवारी नाल काम करना चाहिए है। कोई भी खबर पूरी संवेदनशीलता नाल चलानी चाहिए है, तो संवेदनशील खबरों नूं पूरी जिम्मेवारी नाल लोगों तक पहुँचाना चाहिए है। ये देखते हुए कि इस नाल किसी के आत्म सम्मान नूं ठेस तो नहीं पुज रही। कई बार मीडिया वाले कोर्ट विच चलण वाले जिहड़े मुकदमे ने उन्हां दा मीडिया ट्रायल आप ही शुरू कर देंदे ने, जिस नाल कई बार बेकसूर पकड़े जाते हैं तो जिहड़े क्रिमिनल ने वह बच के निकल जाते हैं। सो ये सोचण वाली गल है कि मीडिया किन्नी जिम्मेवार एक कौम कह लो जां एक जिहड़ा संतंभ है साडे समाज का। सो इस करके कोई भी चीज़ परोसन तो पहला, कोई भी चीज़ कंटेंट दिखाने तो पहला जां सुनाने तो पहला जां खबर लिखने तो पहला उसकी जिहड़ी कोख पड़ताल जिहड़ी आ उह कर ली जावे। सो वधदे हां तुहाडियां अगलियां चिट्ठियां वल। अगली सानू जिहड़ी चिट्ठी आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब तो हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जतेक विरक, मीका विरक, खुरजा यूपी तो तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, पिंड चतरा तहसील जिला फिरोजपुर तो जगजीत सिंह चतरा, प्रेम भूषण गुप्ता, कुलदीप सिंह, गुरसेवक सिंह, गुरचैन ते सुखचैन, बूटा सिंह, टैल सिंह, हरनेक सिंह, अजीत सिंह सहोता, पेंच ते लिखारी सभा दे मैंबर साहबान, पिंड नुकेरियां नेड़े मंडी रोड़ा वाली तो कश्मीर सिंह करनावल, सुखजीत सिंह करनावल, करतार सिंह करनावल, अनमोल, सहजप्रीत, रहमत, खुशप्रीत, सोन लाल चौंकीदार, आशा राणी, हरचरण सिंह बराड़।

0: को बहुत अच्छा होते हुए देखा है
1: जी।
0: लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि विमेन्स रिकर्व टीम ने एक ऐतिहासिक जीत दर्शी, वो भी दक्षिण कोरिया पर
1: जी।
0: तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिकर्व में आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना इतना आसान होता नहीं है और उसमें लड़कियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है।
1: और पंकज जी 5-1 से साउथ कोरिया को इस तरह से हराना, ये वन साइडेड हराना, ये काफी बड़ी प्राप्ति लगती है।
0: ये है, लेकिन इसमें साउथ कोरिया की टीम की बात करें तो वो कहते हैं कि उनका उनकी जो टीम थी इट वाज ऑफ न्यू प्लेयर्स, जो उनके टॉप के प्लेयर्स वो नहीं थे क्योंकि वो एशियन गेम जो सितंबर में होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन फिर भी साउथ कोरिया की एक नई टीम भी इतनी धाकड़ है कि वो ऑल द वे फाइनल तक आई है
1: जी।
0: तो इसका मतलब यह है कि उनके जो मिनिमम क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स इज रियली वेरी गुड। लेकिन भारत ने इस मौके को ताड़ा, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हमने रिकर्व में देखा है कि लड़कों में और लड़कियों में हम लोग सेमी या फाइनल तक आ जाते हैं और वहां पर हमारी गाड़ी अटक जाती है
1: जी।
0: बट दिस इज अ गुड न्यूज फॉर इंडियन आर्चरी।
1: और जो फाइनल मुकाबला चाइना के साथ होना है ये किस तरह से रहेगा और भारत का प्रदर्शन इसमें किस तरह के होने की संभावना है?
0: ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनफैक्ट अगर हम देखें कि चाइना जैसी टीम अब अगर आगे आ रही है इसका मतलब है कि आर्चरी में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है
1: जी।
0: हमने मेंस में भी देखा कि भारतीय मेंस टीम बांग्लादेश से हार गई
1: जी जी।
0: वहां पर वियतनाम की टीम भी आगे आकर उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो चाइना के साथ एक काफी कट टू कट होगा। चाइना भी बहुत सालों के बाद अब वापस उभर रहा है आर्चरी में। तो आने वाले वक्त में भारतीय टीमों को अलग अलग नई नई टीमें जो टॉप की टीमें हैं और नई टीमें सबसे बचकर रहना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा एक अच्छी सीख होगी हम सबके लिए।
1: और अगर पंकज जी व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात की जाए तो रिकर्व महिला में सिमरनजीत कौर ने सेमीफाइनल तक वो अपनी जगह बना पाए हैं, इस प्रदर्शन को आप किस तरह से देखते हैं?
0: ये बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट शी इज अ वेरी गुड शूटर एंड इट्स गुड टू सी कि हमारे यहाँ नई नई जो पौध कहते हैं हम आर्चर्स की
1: जी
0: वो आ रही है। एंड इट्स गुड टू सी कि सिर्फ नए जो लड़के लड़कियां हैं वो कंपाउंड में नहीं लेकिन रिकर्व में भी आ रही है क्योंकि फिर क्या होता है दीपिका कुमारी जैसे सीनियर आर्चर पर हमको बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है
1: जी।
0: तो ये एक अच्छी बात है कि जितना ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ होगा उतना हमें फायदा होगा क्योंकि देखिए अब ये वर्ल्ड कप का एक और स्टेज होने वाला है 2-3 महीनों में प्लस उसी समय एशियन गेम्स भी होने वाले हैं
1: जी।
0: तो ऐसा हो सकता है कि महीने 2 महीने के रेंज में भारत को अलग अलग टूर्नामेंट्स में टीमें भेजनी पड़े
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो ऐसे में नए लड़कियों का लड़कों का उभर कर आना बड़ा जरूरी है।
1: और कंपाउंड में अगर मेंस मुकाबलों की बात करें तो साहिल यादव भी सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, इनका भी रिकॉर्ड पीछे अच्छा रहा है
0: बिल्कुल। और साहिल राजेश ने तो कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने राउंड ऑफ 32 में अभिषेक वर्मा को हराया सिर्फ 2 अंकों से 149-147 और अभिषेक ये गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, जबरदस्त आर्चर है। तो इसका मतलब हमारा वहां पर भी एक अच्छा लेवल बन रहा है। ये वैसी बात हो गई कि नीरज चोपड़ा की आने की वजह से अब हम ओलंपिक्स हो या फिर एशियन गेम्स में हमारे 2-3 जैवलिन थ्रोज आ रहे हैं टॉप 8 में टॉप 10 में
1: जी जी।
0: उसी तरीके से अब आर्चरी में भी ये हो रहा है जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया पंकज अठावले जी साडे नाल गलबात करन लई। पंकज अठावले जो साबका तीरअंदाज ते तीरअंदाजी दे कोच ने सानू दस रहे सन के विश्व कप विच भारतीय तीरअंदाज किस तरह का प्रदर्शन कर रहे ने। खेड संसार प्रोग्राम आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किया जा रहा है। खेड संसार प्रोग्राम च हुण गल करदे आं आईपीएल क्रिकेट दी। आईपीएल क्रिकेट दा हर मुकाबला कुर्सियां दे कंडे ते बह के वेखण वाला है। पंजाब जिन्ने कि हुण तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया सी, 10 मुकाबलियां च 13 पॉइंट्स दे नाल पंजाब इस वेले दूजे नंबर ते है। हालांकि काफी देर तक पंजाब सब तो पहले नंबर ते विराजमान रहा है। पिछले हफ्ते होण वाले मुकाबलियां च पंजाब दी किस्मत ते प्रदर्शन दोवें माड़ा रहा। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब नूं 33 दौड़ां नाल हरा के पूल टेबल ते पहला नंबर हासिल किया। इस तो पहला पंजाब गुजरात नाल होए मुकाबले विच भी 4 विकटां नाल हार गया सी। क्रिकेट माहिर सोच रहे ने कि हुण तक पंजाब दे आरंभक बल्लेबाज प्रभ सिमरन सिंह ते प्रियांश आर्या शानदार प्रदर्शन करते रहे ने पर पिछले 3 मुकाबलियां विच उन्हां दा बल्ला नहीं चलिया। खास तौर ते चर्चा हो रही है पंजाब दी टीम दी फील्डिंग दी। सनराइजर्स हैदराबाद दे खिलाफ 4 कैच छड़े गए जिस करके पंजाब नूं हार दा मूंह वेखना पिया। 11 मई नूं धर्मशाला विच पंजाब दा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल होएगा जिस विच पंजाब तों चंगे प्रदर्शन दी आस है। आईपीएल क्रिकेट विच जे बल्लेबाजी दी गल करिए ते सनराइजर्स हैदराबाद दे हेनरिक क्लासन इस वेले पहले नंबर ते ने जिन्हां ने 11 मैचां च 11 पारियां च 494 दौड़ां 157.32 दे स्ट्राइक रेट नाल बनाईआं ने। अभिषेक शर्मा ने अपनी छिक्के मारन दी कला आईपीएल मुकाबले विच भी विखाई है। 11 मुकाबलों 475 दौड़

अलन स्यो प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंच तनी। ये फरमान बिलावल राग विच साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारित है। जो जीव दी अकाल पुरख नाल अटुट प्रीत दा लखायक है, आप जी फरमाउंदे ने कि हे पाई, प्रभु दे प्यार दी डोर ऐसी कसी हुई है कि वो डोर हुण ना तां तोड़िया टुट सकती है ते ना ही छड़िया छड़ी जा सकती है। अकाल पुरख प्रभु नाल प्रीत पौण दी लोचा रखण वालियां जीव रूपी स्त्रियां ऐसे सज्जन संत दी भाल विच हुंदियां ने जो उन्हां दा मिलाप प्रभु नाल करवा देवे। तां ही तां उन्हां दे हिरदे विचों ए बेनती पिजे बोल आप मुहारे निकलदे ने, प्रभ मिलबे काओ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिलै बड़पागी। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

बैकौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़ पागी। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमीत सिंह शांत अते उना दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द। हुण सरवण करदे हां इस

0: शब्द की व्याख्या व्याख्याकार ने ज्ञानी सुखवंत सिंह।
1: गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगू मोहि करू बेनती, कोऊ संत मिलै बडभागी। रहाओ मन अर्पो धन राखो आगै, मन की मत मोहि सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै वैरागी। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। विचार अधीन ए पावन पवित्र शब्द पंचम पातशाह गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज का उच्चारण किया होया है, जो गौड़ी राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन अंग 204 दे उपर सुभायमान है। शब्द का केंद्रीय भाव रहाओ वालियां पंक्तियां दे विच दर्ज है, जिस दे विच मुख विचार सतगुरु ने पेश कीती है कि जिग्यासू दे मन विच प्रभु नू मिलन दी, अकाल पुरख नू मिलन दी तांग पैदा हो गई है, ते परमात्मा नू मिलना ही किसी प्रेम रत्ते हिरदे दी सब तो वड्डी ख्वाहिश हुंदी है। जो परमात्मा दे मिलाप दा राह दस सकदा होवे, जां किसे भाव उस नू मिलन दे विच सहायता कर सकदा होवे, उस तरह का कोई संत रूप महान आत्मा वड्डे भागां नू गुरु रूप हो के मिल पए, तां मैं पैरी पै के उस अगे बेनती करां कि वह कृपा करके मैनू परमात्मा दे नाल मिला देवे। गुरबाणी दे अंदर गुरु साहिबान ते होर बाणीकारां ने अनेकां थावां दे उत्ते इस भावना का जिक्र किया है। शब्द के आरंभ में सतगुरु फरमाते हैं, प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहि करू बेनती, को संत मिलै बडभागी। रहाओ गुरु अर्जन दे पातशाह फरमाते हैं कि मेरे हिरदे विच मेरे मन विच प्रभु नू मिलन दी प्रीत पैदा हो गई है। परमात्मा दे नाम नू प्यार करन वाले हिरदे लई सब तो वड्डी प्राप्ति यह है कि उस दे मन विच परमात्मा नू मिलन दी उमंग पैदा हो जावे, जिवें गुरबाणी दा महावाक है, उमक्यो हीओ मिलन प्रभ ताई। गुरबाणी दे अंदर गुरु साहिबान ते भगत साहिबान ने उस नाल परमात्मा नाल प्रीत जोड़न नू सब तो वड्डी गल किया है, जिवें साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। शब्द विच अग्गे सतगुरु फरमाउंदे हन, मन अर्पों धन राखो आगै, मन की मत मोहे सगल त्यागी। सतगुरु फरमान कर रहे हन कि मेरी प्रीत विच सहाई होने वाले दे सामने मैं अपना मन अपना धन सारा कुछ उस दे अग्गे भेट कर दिया, नाल ही अपने मन की मत भाव अपनी सब तरह की सियाणप चतुराई का भी त्याग करते हैं, क्योंकि ये चतुराइया सियाणपा प्रभु नू मिलन दे मार्ग विच रुकावट हन। जिवें सतगुरु फरमाउंदे हन, चतुराई सियाणपा कितै कम ना आई है, तुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है। गुरु नानक साहब का भी फुरमान है, चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित, नानक नाम संभाल तूं बद्धा छुट्टें जित। सतगुरु पातशाह ने जिथे चंगियाइयां सियाणपां दे त्याग की गल कीती है, उत्थे गुरु नू मिलाउण वाले नू अपना सब कुछ भेट करन दे वी गुरबाणी दे अंदर गल कीती है। जिवें हाउ मन अरपी सब तन अरपी, अरपी सब देसा हाउ सिर अरपी, ते समीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा। ते गुरु रामदास पातशाह महाराज भी फरमाउंदे हन कि मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावै, सो भाई सो मेरा वीर। विचार अधीन शब्द विच अग्गे सतगुरु का फुरमान है, जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै वैरागी। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे सखी, जिहड़ा वड्डे भागां वाला संत मैनू मेरे वाहिगुरु परमात्मा की बात सुनाउंदा है, उस दी सिफत सलाह दे गुण गाउंदा होया मैनू उस नाल जोड़ सकदा है, मैं उस दे मगर मगर प्रेम विच कमली होई फिरदी हाँ कि वह मैनू मेरे प्रभु की कोई गल सुना देवे, क्योंकि परमात्मा की प्रीत विच रंगे हुए मन दे लई प्रीतम की गल सुनना ही सब तो वड्डी प्राप्ति रह जाती है। इसलिए गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर। विचार अधीन शब्द विच अगे गुरवाक है, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेट्यो पुरख रसक बैरागी। पंचम पातशाह गुरुदेव फरमाउंदे हन कि प्रभु की प्रीत विच लगन दे नाल ही जदों उस परमात्मा ने आप किरपा कीती है, तां पिछले जन्मां विच कीते हुए भले कर्मां दे संस्कार अंकुर रूप होके करुंबला

संजोग स्थापित करन लई जीव रूपी स्त्री अकाल पुरख दे दर ते बेनती जोदड़ी कर दी है। मेल लहो दयाल टैपै द्वारिया, रख लेवो दीन दयाल प्रमत बौहारिया। इस शब्द का गायन कीता है भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

मेल लहो दयाल टैपे द्वारिया, रख लेवो दीन दयाल प्रमत बौहार्या। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल RN रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव MA Baby ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की

0: प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़, 100.8 मेगाहर्ट्ज़, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है।

0: एकड़ हो गया है। इस तहत 3,882 एकड़ हो रकबा शामिल किया जा रहा है, जिस नाल कुल खेतर 99,329 एकड़ तक पहुंचेगा, जो करीब 200% के वाधे को दर्शाता है। तरन तारण पुलिस के CIA स्टाफ ने एक अफरीकी औरत को 3 किलो हीरोइन और एक कार समेत गिरफ्तार करके बड़ी सफलता हासिल की है। जब्त की गई हीरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 करोड़ रुपए दसी जा रही है। इस संबंध में तरन तारण पुलिस ने औरत विरुद्ध मामला दर्ज करके अगलेरी जांच शुरू कर दी है। होशियारपुर के टांडा म्याणी रोड से अड्डा पुल पुख्ता नेड़े एक बेकाबू ट्रक ने एक औरत समेत 3 लोगों को कुचल दिता। हादसे में हुण तक 2 लोगों की मौत हो गई है। तीजे व्यक्ति जिसकी हालत नाजुक है, वो टांडा सिविल हस्पताल में मुढ़ली सहायता तो बाद अमृतसर रैफर कर दिता गया है। मृतका की पछाण हरभजन कौर वासी म्याणी ते अश्विनी कुमार वजों हुई है। वधेरे जानकारी देंदिया थाणा मुखी गुरजिंदर सिंह नागरा ने दसिया,
1: एक ट्रक जिहड़ा खाली सीगा जिहड़ा कणक लोड करन वास्ते जा रहा सीगा मंडी दे विच, इक तां पहलां जी एक बंदा अबजी सड़क क्रॉस कर रहा सी, ट्रक ने जिहड़ा अपनी चपेट च लिया, अश्विनी कुमार जिहड़े उन्हां दी मौके ते मौत हो गई। उस तों बाद फिर जो ट्रक भजाया ते अगे जा के इक होर ने जिहड़ा हरभजन कौर नां दी लेडी है जिहड़ी म्याणी दे रहिण वाले ने, उन्हां दी वी ट्रक थल्ले आउण करके जिहड़ी डैथ होई है। इस तों इलावा होर वी उहने इक दे व्हीकल दे विच वी जिहड़ा रैश ड्राइविंग करदिआं मतलब ट्रक ने भजाया सुबह साइड नूं, जल्दी उहनूं राउंड अप करके जिहड़े वारस ने जी उहनां दे बयानां ते असीं जिहड़ी इहदी कार्रवाई कर रहे हैं।
0: IPL क्रिकेट विच जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम च राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटन्स नाल होएगा। आखिर च खास खबरां, पंजाब के सनत मंत्री संजीव अरोड़ा नूं अज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED वल्लों चंडीगढ़ स्थित उन्हां दी रिहायश तों गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवावां अथॉरिटी नालसा वल्लों अज देश भर में इस साल की दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लाई गई। पंजाब भर च भी लोक अदालतां लाईआं गईआं। आकाशवाणी की स्थापना के 90 साल पूरे होण नूं मनाउण लई राष्ट्रीय लोक प्रसारक के जलंधर ते पटियाला स्टेशनों ने अज वॉकाथॉन कराई। होशियारपुर च एक बेकाबू ट्रक हादसे में एक औरत समेत 3 लोगों की मौत। IPL क्रिकेट में अज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स नाल। इस नाल ही साडा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। शाम दे 6:30 बज रहे ने। हुण पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: का निभा रहा है। उसी तरह पंजाब सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन हैगा, वो हर साल वैटलैंड उत्ते पंछियों की जनसंख्या के डाटा कंपाइल करता जिद असी बहुत सारे सालों तो उन्होंने नाल काम कर रहे हैं। इस तो इलावा जी हैगी आप कन्वेंशन ऑन जैविक विभिन्नता कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी आ उद उदे भी 1992 के जो साइन हुई सी तहत भी आप जड़े है सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स के फ्लाईवेज नूं आप करिए। सो इस तो इलावा कन्वेंशन जड़ी हैगी है कंजरवेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स से भी आप संधि के शामिल है। उस तरह भारत जड़ा है कन्वेंशन ऑन जिहड़े हैगे इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड एनिमल्स जिन्ना वाइल्डलाइफ एक्ट आप हर तरह की संधि दे जे पूरा उतरन की कोशिश की हैगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब हुण जिक्र ये है कि देखो साड़ी जिहड़ा सरमाया है जां साडा खजाना है साड़ी नसल है ना,
0: बिल्कुल जी,
1: जैसी नसल वैसी फसल। हुण जदों आपां साड़ी आउण वाली जनरेशन जां आउण वाली साड़ी नसल उहनूं इहनां दी अहमियत बारे इन्हां दीआं सारीआं लोड़ां दी पूर्ती दे बाबत जे समझाउणा होवे ते जिद्दां हुण आपां इह कहि सकदे आ कि इन्हां दे समां सारणी तां होऊगी किहड़े किहड़े समयां दे विच इह प्रवास करके वैटलैंड दे विच आउंदे आ किहड़ियां किहड़ियां वैटलैंड है ते किद्दां साडा जिहड़ा यंग जिहड़े साडे बच्चे है जां साडे यंग लोग है उहनां नूं इहदे नाल जोड़न लई कोई उपराले है कीते जा रहे तां कि उहनां नूं इस दा महत्व और इन्हां दी जीवन शैली क्योंकि इन्हां दी जीवन शैली तों साडे लई सिखण नूं बड़ा कुछ है।
0: सिर्फ इदा वा कि वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाते हैं सारी दुनिया के विच वो आम तौर पर मनाया जाता है दूजे शनिवार जां तां मई महीने के विच अक्तूबर महीने के विच पर अपने इंडिया के ज़्यादा माइग्रेटरी पंछी जिहड़े हैगे सर्दी की आमद जो अपनी शुरू होंदी है उदों ही आते हैं। सो जिहड़ा अक्तूबर का हैगा वह बहुत जिहड़ा स्कूलों मनाया जाता है जिदे विच एग्जीबिशन भी लगदियां टाक शोज़ भी होंदे आ उहदे विच बच्चों के कंपीटिशन भी होंदे आ सो उहदे विच लैक्चर्स भी होंदे आ ताकि बच्चों का जिहड़ा हैगा बर्ड फेस्टिवल्स भी कई यूनिवर्सिटियां करदियां ने और टूर्स भी लगांदे ने कई एरियाज़ के जिहड़े हैगे कंजरवेशन एरियाज़ के ताकि उन्होंने उन्होंने पंछियों के बारे जानकारी और उन्होंने आइडेंटिफिकेशन बारे पता लगे। सो ये बहुत सारे जिहड़े मैथड ने अपने पंजाब दे विच पोंग डैम के नेड़े हिमाचल के पंजाब के बॉर्डर से पोंग डैम से बहुत पंछी आते हैं हरीके वैटलैंड भी आप बच्चों लैके जाइए स्कूलों के कॉलेजों तो बहुत सारे अपने 200 तो वध माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज़ उत्थे आदि ने। सो उन्होंने नाल उन्हों की भी जी जानकारी वधूगी तो उन्होंने मन चा भी होगा कि आप बचाइए। सो उस तरह जिहड़ा हैगा नंगल वैटलैंड दे विच भी पंछियां दा रोपड़ वैटलैंड दे विच भी कांजली वैटलैंड दे विच भी सो ये जिहड़ा हैगा ना बेसिकली मैनूं ऐ लगदा हुंदा कि जे आपां ना सर्दियां दे विच जिवें कह लो कि नवंबर दे विच जदों कि हुण टैंपरेचर घटना शुरू हुंदा उदों पंछी आने शुरू हो जांदे आ ते जदों टैंपरेचर वधना शुरू हुंदा फरवरी दे अंत च उहनां दी वापसी शुरू हो जांदी आ। इन्हां महीनियां दे विच बच्चियां दा जरूर ट्रिप लवाइए
1: बड़ा जरूरी है। ते मेरा पुछण दा मतलब ये है कि देखो आपां है सारे कुदरती जीव आ
0: बिल्कुल जी
1: कुदरत नालों टुट्टिया जीव सिर्फ और सिर्फ मनुख है।
0: हाँ जी
1: ते मनुख नूं कुदरत नाल जोड़न दा सब तो वधिया तरीका यही है कि कुदरती स्रोतां नाल या कुदरत दी सिरजणा दे नाल जुड़ियां बाकी चीज़ां जुड़ियां हुई हैं उहदे जीवन नूं समझण नाल या उहनां दे नाल जुड़न नाल ही बंदा कुदरत तक जिहड़ा दुबारा तों पहुंच सकता है। सो इस करके पंछियों का जिदा तुसीं जिक्र कीता है कि पंछियों दे विच इहो जिहियां चीज़ां है सिखण नूं कि किते ना किते सानू जिदा असीं बहुत कुछ करते हाँ तप करते हाँ जप करते हाँ पर तप जप जिहड़ा है वह सारा कुछ तुहाडा जिदा कहिंदे कि बहुत तुहानू छोटा लगूगा जदों तुसीं कुदरत नाल इन्हां स्रोतां दी जरिए जुड़न दी कोशिश।
0: मैं ना जी बहुत सारियां ना बुक्स पढ़दी रहनी हैगी आ कली पंछियां नहीं होर जिवें जंगली जानवरां दे बारे होरां दे बारे भी जदों तुसीं उन्हां दी देखदे हो उन्हां दा बिहेवियर देखदे हो उन्हां दी लाइफ हिस्ट्री देखदे हो वह किस तरह उस कुदरत नाल जुड़े ने जितों आपां हौली हौली टुटदे जा रहे हाँ तो तुहानू अपना आप ने बहुत बौना लगता तुहानू लगता भी ना तो किन्ना कुछ सीखण दी लोड़ आ कि किन्ने औखे हो के वह आते जाते फिर भी वह अपनी रहण वाली थावां जिथों वह तुरे होंदे आ अपने उस घर दे नाल किदां प्यार रखते आ किन्ना कुछ छोटा जिहा जीव सहिंदा वा है ना कि रस्ते दे विच किन्नियां उहनू औखियाईआं ने और ह्यूमन जिवें कह लो कि अर्बनाइजेशन दे नाल पापूलेशन वधन दे नाल इंडस्ट्रीलाइजेशन आ किन्ना पोल्यूशन आ फिर भी वह किन्ना हौसले ना उत्थों दी लंघ के वापस उस थां मुड़दा। सो बंदे लई ना एक बहुत ज्यादा हिम्मत देने लई एक एग्जांपल्स ने पंछी
1: बिल्कुल जी बंदे ने ही हद्दां ते सरहद्दां च वंडिया समाज
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: सो इस करके पंछियों तो यह सीखना है कि हद्दां ते सरहद्दां जिहड़ियां है समाज के बंधन नहीं हुंदियां ये पंछियों तो सानू सीखना चाहिए।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: गल है।
1: फिर तेरे सामना की करना चाहिए
0: सर? राजा राम का ठेका कैंसल कर देना चाहिए है। सिर्फ ठेका ही नहीं कैंसल करना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहना है यह जो सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनियां के लाइसेंस ही कैंसल कर देने
1: चाहिए। अपने आप ते कंट्रोल कर रामलाल, इस तरह ब्लड प्रेशर हो जाता है। तैनू याद है जिस दिन तू मेरे पीए वजो ज्वाइन किया सी, मैं तैनू कुछ गल्लां याद करने लिए कहा सीगा, लगता है तू वो भुल गया।
0: नहीं सर, मैनू सब कुछ याद है।
1: तो फिर दस की कहा सी?
0: इहो कि तुहाडे ते क्लाइंट्स दे विचकार मैं पुल हाँ।
1: होर
0: सर, मैनू तुहाडे दोस्तों की शिनाख्त करनी आनी चाहिए।
1: गल्लां याद ने पर गल्लां उत्ते अमल करना भुल गया। रामलाल जी, राजा राम कंट्रैक्टर साडा अपना बंदा है, मेरा यार है।
0: पर सर, ये जो कुछ भी होया है बहुत वड्डा हादसा है, ये सब गैर कानूनी है सर।
1: रामलाल, तू कानून मेरे तो ज्यादा जानना।
0: सॉरी सर।
1: हुण ध्यान ना सुन, राजा राम दियां सारियां फाइलां कढाओ, उन्हां उपर नोटिंग करो, ते अज शाम नूं मेरे घर लेके आओ।
0: घर? घर क्यों सर, मैं समझा नहीं।
1: घर आएगा तो समझ जाएगा, आज ठीक 7 बजे।
0: ठीक है सर, ठीक है। हाँ।
1: आओ आओ रामलाल जी।
0: नमस्ते सर। सर तुहानू भी नमस्ते जी।
2: नमस्ते रामलाल।
1: मैनू तो राजा राम कंट्रैक्टर नू इस तरह इकट्ठिया वो भी घर के दारू पींदियां वेख के हैरानी तो हो रही है ना?
0: नहीं सर, ऐसी गल तो कोई नहीं। सर मैं इन्हां दी कंपनी दी सारियां फाइलां लै आया।
1: ठीक है, रख दे टेबल ते। इन्हां दीआं फाइलां विच पेमेंट वाले सारे कागजां उपर फ्लैप लगा दे।
0: वो तो मैं दफ्तरों ही लगा के ले आया सर।
1: ठीक है, मैं रात नूं आराम दे नाल चैक करांगा। आ बैठ, असी हाले के की पैग लगाया, तू ही ला लै।
0: नहीं नहीं सर, मैं शराब नहीं पींदा।
2: नहीं पींदा तो शुरू कर लै।
1: भाई पहली बारी मेरे घर आया है, आखिर साडा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना।
2: इनकार नहीं करी दा रामलाल, काउंसलर साहब तेनू ऑनर कर रहे ने। हले फाड़े,
0: तुसी तो एवं इज्जत कर रहे हो जी। ये तो बड़ी कौड़ी है जी।
1: हले नाल मेवे खा, कौड़ी नहीं लगेगी।
2: कौड़ा तो बस पहला पैग हुंदा है, फिर भावें जिनी मर्जी पी लो कौड़ी नहीं लगती। हल है, एक होर पैग ला लै।
0: नहीं सर, मैनू तो एक पैग नाल ही चक्कर आने लग पिया।
2: ओए लै लै यार, हुण पैग कौड़ा नहीं लगेगा।
0: अच्छा लियाओ जी। वाकई सर, आ पैग कौड़ा नहीं सी। वैसे काउंसलर साहब, शराब विच वाकई बहुत ताकत होंदी है। वेख लो, मैं इन्नी बार तुहाडे घर आया, पर अखां चुके घर नूं वेखण दी जरूरत अज पई है। आहा, तुहाडा घर बहुत वधिया बनिया होया है, क्या नक्शा है।
1: राजा राम होरां बनवाया है
0: सर, हर चीज़ वधिया है। फर्नीचर
1: ये भी तो राजा राम होरां ने दिता है।
0: फर्नीचर की हर चीज़ वधिया है सर। आ फर्नीचर, अलमारियाँ, पर्दे, टीवी, म्यूजिक सिस्टम।
1: इस घर की हर चीज़ राजा राम होरां दी कंपनी वालों आई है।
0: अच्छा जी,
1: ये जिहड़ी शराब मैं ते तू पी रहे ना
0: जी,
1: ये भी राजा राम होरां दी कंपनी वालों ही आई है।
0: सच?
1: हाँ बिल्कुल सच। ये भी इस कौड़ी चीज़ का कमाल है रामलाल, इनू पी के बंदा 100% सच बोलता है।
0: कमाल है, पूरा घंटा हो गया उड़ीकदिया, पर बस हाले तक नहीं आई। ओए रामलाल दिया बच्चा, तेनू नशा ज्यादा हो गया, हो सकता है बस लंघ ही होवे, तू ध्यान ना दिता होवे। चलो आपे आ जाएगी। एक काउंसलर किन्ना ट्रीट ते कमीना है, किड्डी शान नाल आख रहा सी एक कर दी हर चीज़ राजा राम ने दिती है, ते हो राजा राम वो तो काउंसलर नालों भी ज़्यादा कमीना है। पई मां

0: चोर से था चोर, राजा राम चोर, काउंसलर चोर, दफ्तर चोर, महकमे चोर। इस तरह लगता है जब इस सारी दुनिया चोरों की परी हुए, हर पासे चोर ही चोर। 40 करोड़ चोर, चोर ही चोर। ते मैं कौन हूं? अली बाबा? पर वो किस्से कहानी वाला अली बाबा था चोरां नूं मोर होके टकरिया सी, ते मैं किनूं टकरा, किस नूं टकरा? ओए छड, ओए तू की टक्कर लाए, तू तो आप उन्हां कमीनियां चोरां दा कुत्ता बन गया है, जड़ा उन्हां कोलों शराब पी आया है, तू भी चोर बन गया है। कुत्तिया कमीनिया, शर्म नहीं आई तेनू? सारी उम्र ना तो अपने बच्चों का टिड भरिया, आज सरकारी स्कूल दे बच्चों की बिल्डिंग डिगन विच बागीदार बन गए, कल किसी होर स्कूल दे बच्चों की बिल्डिंग डिग पई, किदा बचाएगा उन्होंने? लानतिया ना मुरादा, शर्म कर, ओए शर्म कर। तू की क्या है, इन्हां नाल लड़ नहीं सकदा? जे लड़ नहीं सकदा तो इन्हां चोरां दी टोली विच शामिल होण दा वी तैनूं कोई हक नहीं। तो फिर मैं की करां? जा लड़, जे लड़ नहीं सकदा तो एक पासे हो जा, पापां दे इस रस्ते तो पूरी तरह हट तां सकदा है ना? हाँ हट सकदा, पर किवें? बड़ा आसान काम है, अपने मन नूं पक्या कर, सवेरे रूटीन वांग उठ, शेव कर, नहा, मंदर मत्था टेक, ते दफ्तर पहुंच जा, हाजिरी लगा, पौड़ियां चढ़ ते चौथी मंजिल ते पहुंच जा, ते फिर बस इक्को छाल मारनी है, ते बस उन्हां दे रस्ते होर, तेरा रस्ता होर हो जाएगा। की क्या है कि दफ्तरी क्यों? बेवकूफा, दफ्तर विच आत्महत्या करेगा तो हो सकता है कल नूं कोई राम लाल इन्हां नाल लड़ाई करन लई तैयार हो जावे, कोई तो होवेगा जिहड़ा तेरी मौत का कारण समझ जाएगा, ते घट्टो घट इन्हां करोड़ों चोरों विचों एक चोर तक कट जाएगा। राम लाल अली बाबा बन ते मर के लोगों जगा। ठीक है ठीक है, राम लाल कल इसी तरह ही करेगा, इसी तरह ही करेगा।
1: हाँ जी रुड़िया राम जी,
2: ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਕਬੂਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
1: ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण वेला हो रहा है साडे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम दा। पेश है स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ये लम्हे।

हाय दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम और मैं हूं आपका आरजे चेतन। एंग्जाइटी इंसान के लिए घातक है। ये मस्तिष्क को चोट पहुंचा दे सकती है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में लोगों की जिंदगी जैसी हो गई है, उसमें एंग्जाइटी का होना बहुत आम बात है। रिश्ते में विश्वास की कमी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, असुरक्षित महसूस करना, लड़ाई झगड़े, गलत व्यवहार, अनियमितता, समाज से दूर रहना, अपनी ही जिंदगी में लीन रहना, ये सब बेचैनी के कारण है। एंग्जाइटी तो हर किसी को होती है, परंतु इसे बीमारी के तौर पर पहचानना मुश्किल है। अगर कोई विशेष नकारात्मक विचार या परेशानी बहुत लंबे वक्त तक बनी रहे और उससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने लगे, तो ये वाकई खतरनाक है। एंग्जाइटी अवसाद, निराशा व दुख से जन्म लेती है। जब हम अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तो वह हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार नजरअंदाज किए जाने पर अवसाद एंग्जाइटी का रूप ले सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये घबराहट के दौर पैनिक अटैक होते हैं। एंग्जाइटी के दौर में व्यक्ति को हर समय चिंता, डर व घबराहट महसूस होती है। इसके अलावा उल्टी या जी मचलने की समस्या भी महसूस होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। जब भी कोई विचार अपने निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंग्जाइटी कहते हैं। विचार हमेशा एक निश्चित स्तर तक ही किया जाना चाहिए। सीमा से अधिक विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। जब तक कोई भी विचार आपको परेशान न करे तब तक बस सामान्य है, परंतु जब कोई विचार या सोच निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे, तब यह चिंता का विषय है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। एंग्जाइटी के सामान्य लक्षण ये है दोस्तों: बेवजह की चिंता करना, हृदय गति में बढ़ोतरी होना, छाती

में खिंचाव महसूस होना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बातचीत करने से डरना, लिफ्ट वगैरह में जाने का डर कि वापस नहीं निकल पाएंगे, जुनून की हद तक सफाई करना। दोस्तों, इस एंग्जाइटी के कई प्रकार हैं, जैसे सामान्य एंग्जाइटी, अनियंत्रित जुनूनी प्रकार, सामाजिक चिंता प्रकार, डर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, घबराहट। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर एंग्जाइटी। ज्यादा चिंता करने लगना, छोटी से छोटी बात को ज्यादा सोचना, और ऐसा आपकी जिंदगी में बार बार होना एंग्जाइटी का ही लक्षण है। इसके चलते आप खुद को महत्वपूर्ण कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। तनावपूर्ण घटनाएं, कार्य का बोझ, तनाव, अपने किसी प्रिय व्यक्ति का निधन अथवा प्रेमिका से ब्रेकअप जैसी अविश्वसनीय घटनाएं आदि। जिन व्यक्ति के परिवार में मानसिक विकारों से जुड़ी समस्याएं होती रहती है, उन्हें चिंता विकार की समस्या जल्दी हो सकती है। जैसे ओसीडी विकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज या हृदय रोग आदि। अवसाद से पीड़ित लोग भी एंग्जाइटी की चपेट में आ सकते हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा हो, उसकी कार्यक्षमता में गिरावट आने लगती है। इससे कामकाज से जुड़ा तनाव बढ़ने लगता है और फिर एंग्जाइटी का जन्म होता है। पीड़ा, गम, मायूसी, उदासी व तकलीफों को भूलने के लिए बहुत से लोग शराब, नशीली दवाएं और दूसरे नशे का सहारा लेने लगते हैं। यकीन मानो, कभी भी ये चीजें एंग्जाइटी का इलाज नहीं हो सकता है। नशे का इस्तेमाल समस्याओं को और बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को पूर्णतः के साथ काम करने की आदत होती है, लेकिन जब यह पूर्णतः की जिद सनक बन जाए तो यह एंग्जाइटी के अधीन आ जाते हैं। यही जिद उन लोगों को बिना वजह की घबराहट और चिंता को जन्म देती है। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो उसका सहानुभूति तांत्रिक तंत्र बहुत तेज काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूखना शुरू हो जाता है। घबराहट हो जाना, ज्यादा कुछ सोचने पर असहजता और घबराहट होने लगती है, जो कि एंग्जाइटी का ही एक लक्षण है। ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे पहले कि ये बढ़े, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। जब हमें ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सामान्य फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से हो रहा है। यदि इस थकान के कारण सिरदर्द या घबराहट हो तो यह एंग्जाइटी का एक लक्षण है। ज्यादा चिंता करने से नींद नहीं आती और तनाव बढ़ने लगता है। शोध से पता चला है कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती हैं और चिंता से याददाश्त पर भी असर पड़ता है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वो बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, जिससे उनके सोशल लाइफ पर असर पड़ता है। मांसपेशियों में तनाव रहने लगता है। व्यक्ति को चिंता के दौर पड़ने लगते हैं। वो खुद को हर जगह असुरक्षित पाता है। एंग्जाइटी का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति सही से सो नहीं पाता, नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाता है। नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंग्जाइटी के लक्षण है। एंग्जाइटी से पीड़ित लोगों को घबराहट का दौरा पड़ने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कन बढ़ने लगती है और पसीना आने लगता है। जिन लोगों को ज्यादा बेचैनी होती है, वो सामाजिक स्थितियों से डरते रहते हैं। उन्हें समाज में उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि समाज उन्हें और उनकी बातों को अहमियत नहीं देती है। एंग्जाइटी से पीड़ित इंसान कभी भी संतुष्ट का अनुभव नहीं कर पाता है। उसे सदा दुख का एहसास होता रहता है और वो संतुष्ट जीवन का आनंद लेने में असक्षम होता है। व्यक्ति को चिंता किसी भी चीज से किसी भी समय हो सकती है, लेकिन अगर सही समय पर उसका इलाज न किया जाए तो यह अवसाद का रूप ले सकती है और पीड़ित व्यक्ति को घबराहट और चिंता के दौरे पड़ने लगते हैं। हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर एंग्जाइटी के एक भी लक्षण से आप, आपके परिवार का कोई व्यक्ति या जान पहचान का कोई इंसान पीड़ित है, तो सबसे अच्छा यही है कि इलाज के लिए आप किसी अच्छे चिकित्सक, मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की मदद लें। एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट मेडिकेशन और काउंसलिंग से किया जा सकता है। एंग्जाइटी की समस्या होने पर उसका हल ये नहीं है कि आप उसे अंतिम स्तर मानकर बैठ जाए। हिम्मत करके समस्या का सामना करें। एक ना एक दिन ये एंग्जाइटी आपसे जरूर दूर हो जाएगी। तो दोस्तों,

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: प्रोग्राम चल रहा है सुसदिता जिदे तहत प्रद्युमन की आवाज़ दे विच तुसी गीत सुन रहे हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्न में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ED

0: ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार

नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धुंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से, मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए कि अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें, आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी।

की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करें, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेप अप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी। तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था। तो नहीं, बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा, यदि हम भी वही सब करने लगे। तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही है आकाशवाणी की, वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे, वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से, और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग। तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से, उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है। वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं, आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने, जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना CD का

0: नहीं था, तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर्ड नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि वो सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैक्लुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैक्लुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल है, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन है और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और

0: ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट विदेशी आर्टिस्ट हैं जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है।

0: ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है। तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाओ में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यार दोस्तों, मेरा नाम AK जुगबाय है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे 1 साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का 1 साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है। भारतीय लोगों के साथ मैंने बहुत काम किया है, अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं। भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए। और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है। चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो, ये भारतीय संगीत की मधुर तान, दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
4: और मैं प्रांजल।
5: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी 100-100 रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
6: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, 1-2 स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स

0: बढ़ा रहा है अपने प्रोडक्ट्स को, फिर और हौसला बढ़ाते रहे। मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपस होना चाहिए, इतने इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहाँ का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है।
1: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ, जिससे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन्स को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, तो वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
2: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते हैं कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
3: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
4: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
5: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
4: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
5: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
4: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है, बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
6: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से लेह में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
5: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
4: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
5: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
4: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
7: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं ये मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
4: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
5: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल
4: और मैं नेत्रा।
8: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
9: ये आकाशवाणी है। आज के संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है राजकुमार मजुमदार का संतूर वादन। श्री राजकुमार मजुमदार भारत के बहुमुखी संतूर वादकों में से एक हैं। अपनी विशिष्ट वादन शैली

0: और मधुर ध्वनि के लिए वे संगीत प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। विशेष रूप से दोनों हाथों से संतूर को उल्लासपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की उनकी कला श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत अपने पिता सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक स्वर्गीय संगीत साधक पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की। इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ संतूर रिसाइटल बाय राजकुमार मजूमदार। राजकुमार मजूमदार इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल संतूर प्लेयर्स इन इंडिया, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santur with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santur under the guidance of the legendary santur maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
0: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसम्मोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: He is accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. Rajkumar Majumdar begins his santur recital with rag Jansammohini, presenting Alap, Jod and Jhala. Vilambit composition is set to Rupak Tal and Madhyalay. Drut composition is set to Teen Tal.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्न वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी

0: पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी The news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agni Mitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaka Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress.

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। रात दे 11:10 हो रहे ने। इहदे नाल ही अज दी इस सभा दे प्रोग्राम हुण खत्म हुंदे ने, पर साडे DTH स्टूडियो तो प्रसारण जारी रहेगा। इस मीटर ते कल सवेरे 3:55 ते फिर हाजिर होवांगे। हुण इजाजत दिओ, शुभ रात्रि, जय हिंद।
1: जी दोस्तों, वेला हो गया है प्रोग्राम सौगात दा, ते मैं कमल शर्मा हाजर नाजरा जी लैके प्रोग्राम सौगात, ते तुसी भी हाजर नाजर होवोगे अपने हत्थां च मोबाइल फोन लैके। सो साडे वेड़े अपनियां फरमाइशां पुजदियां करन दे लई साडा नंबर नोट कर लो। साडा लैंडलाइन नंबर है 0181-23-42-171, ते वट्सएप नंबर है जी 9465536077। इस दे जरिए भी तुसी अपने फरमाइशी गीतां दे मैसेज सानू भेज सकदे हो। ते आओ फिर प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां इस गीत दे नाल।

0: क्या बात, क्या बात। हेलो
1: सत
0: जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह तो बोल रहे हैं? सो बहुत बहुत स्वागत जगशीत सिंह जी, पूरे ढोल ढमक्के दे नाल स्वागत है जी। नहीं जी, असीं खुल के गल ही करी दी है, बट प्रोग्राम दे विच तां सिर्फ गीत ते गीत दी फरमाइश दी ही गल हुंदी है ना जी।
1: हाँ
0: ते
1: जी, हाँ जी सर।
0: दसो किहड़ा गीत सुनाइए तुहानूं?
1: सर ताड़ी पसंद
0: क्या बात है जी, ते जरूर फिर तुहानूं असीं लंबड़दार दी फिल्म दा एक गीत सुनाने हैं। धन्नवाद जी कॉल करन दे लई। ते सानूं मैसेजेस भी बहुत सारे मिल रहे ने, और मैसेजेस दी कड़ी दे विच सानूं जिहड़ा सानूं फरमाइश कीती है जी, ये कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमान, श्रीमती कृष्णा धीमान, राहुल धीमान, कोमल धीमान, शुभम धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल कुंज, परव प्रेम धीमान, चिराग रजत धीमान, राजेश धीमान कहिंदे जी सानूं सुरेंद्र कौर होणा दा गाया गीत एक मेरी अख काश नूं सुणा दिओ। ते जरूर, ते लो फिर जगसीर होणा दी फरमाइश दे उत्ते असीं ये गीत सुणदे हां।

0: हेलो।
1: यार
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने? ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: से

0: हेलो।
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी। सर
0: हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हैं ते केड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: जी, मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: आहा, क्या बात है, चंडीगढ़ तो जी। तो बहुत बहुत स्वागत, पूरे ढोल ढुमक्के दे नाल स्वागत।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा
0: होर सुनाओ जी, ठीक ठाक हो?
1: हाँ बहुत वधिया ने सर जी, ठीक ठाक।
0: ते ठीक ठाक ही चाहिए जी। दसो फिर केड़ा गीत सुना दिए?
1: अमरनौरी का गीत सुनना जी, बाजरे का सिक्का।
0: हाँ, वैसे बाजरे दी रोटी तुसी कदी खाधी, ये दसो पहला।
1: खाती हुई बचपन की। हाँ
0: क्या बात है, फिर तो बड़े भागा वाले हैं,
1: जी,
0: क्योंकि
1: हाँ जी,
0: जदों तक असी वड्डे होए हैं ते असी तो बाजरे बुजरे का कोई बहुता ज़्यादा नहीं, हुण ही सुनते हैं ज़्यादा। हाँ
1: एक ऐसी रोटी हुंदी थी, प्याज पूज पा
0: जी,
1: के
0: वो तो सुनी है जी,
1: बनाते
0: आपां
1: थे
0: भी
1: जी
0: वो खाधी भी है, सुनी भी है,
1: फिर।
0: पर बाजरे दी रोटी दा जिहड़ा हैगा वो अजकल बड़ा ज़्यादा ट्रेंड है। वो कहिंदे ने कि बड़ियां बीमारियां दूर करदी है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ते
1: हाँ जी,
0: चलो, अमर नूरी होना दा एक गाना सुन के बहुत सारे श्रोतियों ने साडे कष्ट कट्टे जाणगे बाजरे दे सट्टा ही सुन के।
1: ठीक
0: कहिंदे ना भी किसे चीज़ दी महक भी आ जावे ना, ते उहदे नाल भी अद्धियां बीमारियां दूर हो जांदियां।
1: है जी, हाँ जी,
0: ते
1: हाँ जी,
0: लो फिर सुनदे हैं गीत।

0: हेलो,
1: हेलो कमल सर जी, सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते कैडी जगह तो बोल रहे जी?
1: जी। तो मैं जी फायदा
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है, पूरे
1: का
0: टोल टू
1: ओके
0: पक्की
1: सर
0: दे नाल स्वागत है।
1: ओके।
0: होर ठीक ठाक हो जी?
1: हाँ जी, तो सुनाओ जी, तो
0: बस बहुत वधिया जी।
1: दिन गल हो गई तो और वधिया हो जाते
0: हाँ
1: जी।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।
1: हाँ
0: ते दसो फिर केड़ा की सुनाइए तुहानू?
1: मिस पुजे दादो सर जी, चल फिक्का फिक्का।
0: चल फिक्का फिक्का लो जी,
1: हाँ जी
0: सुनते हैं जी। धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: ओके सर, थैंक यू।
2: ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ

0: हाँ जी,
1: वधिया
0: क्या बात है, क्या बात है। और साढ़े श्रोते भी बहुत वधिया, जिहड़े बड़ा इंतजार कर करके तद भी सानू फोन दे करन दे लिए लगे रहिंदे ने। बड़ा धन्नवाद उहनां दा।
1: साथ देना ही देना जी, भावे कोई लगे चाहे ना लगे,
0: हाँ जी,
1: साथ
0: धन्नवाद जी,
1: तो देना।
0: बिल्कुल बिल्कुल। दसो केड़ा गीत सुनाइए।
1: हाँ जी, तुम गुरदास मान का इतने पैसे सुना दिए,
0: क्या
1: इसको
0: बात है,
1: तोड़ना है,
0: आहा
1: बड़ी
0: क्या
1: बड़ी
0: बात है,
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार जी।
0: हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं तो केड़ी जगह तो बोल रहे हैं?
1: बिट्टू
0: सो बहुत बहुत स्वागत बिट्टू जी, पूरे टोल टमके के नाल स्वागत है तो
1: बोल
0: थोड़ा।
1: रहे थैंक यू, बहुत वधिया लगा ढोल भी, तुहाडा प्रोग्राम भी बहुत
0: धन्यवाद
1: वधिया।
0: जी, धन्यवाद।

कह गावा तू साहेब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन न साकाओ तू ठाकुर ऊंच पगवाना। इस विच कोई अतकतनी नहीं कि अकाल पुरख दी महिमा बयान ही नहीं कीती जा सकती, उस दे गुण गायन नहीं कीते जा सकते। पर फिर भी मन विच ए लोचा हुंदी है, गाये गुण गोपाल कृपा निध, दुख बिदारन सुख दाते सतगुर, जाको पेटत होए सगल सिद्ध। सरवण करदे आ भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

यह गुण गोपाल कृपा निध दुख बिदारन सुख दाते सतगुर जाकौ पेटत होए सगल निध। इस शब्द गायन कीता सी पाई बख्शीश सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। ओ परमात्मा सर्ब कला समर्थ है, सब जियां दा दाता है, दीना ते दया करन वाला है, सारे जियां दा रिजक दाता है। तांते फिर दिन रात उसे दे ही गुण गायन करने बढ़ते ने। रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना, जीय जंत सरबत नाओ तेरा त्यावना। सरवण करदे आं भाई जगीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों इस पौड़ी दा गायन।

0: रैण दिनस पर भात तू है ही गावणा। इस पौड़ी का गायन किया सी भाई जगीर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस पौड़ी की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी दिलबाग सिंह।
1: पौड़ी रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, भगत जना कै संग पाप गवावना, जन नानक सद बलिहारै बल बल जावना। ए पावन पौड़ी धन गुरु रामदास जी दे पावन मुखारबिंद तों उचारण कीती हुई है। अति राग सोठ वार महले चौथे की सरलेख हेठ बाणी विच पौड़ी दे रूप विच दर्ज है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 652 ते सुशोभित है। गुरबाणी दे शब्द दा केंद्री भाव रहाओ दियां पंक्तियां विच हुंदा है, पर जिस शब्द विच रहाओ दियां पंक्तियां नहीं हुंदियां उस शब्द दियां पहलियां पंक्तियां विच शब्द दा केंद्री भाव मन्निया जांदा है। गुरु ग्रंथ साहिब विच 22 वारां दर्ज हन। वारां विच श्लोक ते पौड़ियां दर्ज हन। केंद्री भाव पौड़ी विच हुंदा है। विचार अधीन शब्द रूपी पौड़ी दियां पहलियां पंक्तियां हन, रैण दिनस प्रभात तू है ही गावना। अकाल पुरख सर्व कला समर्थ है, सब जीवन नूं पैदा करन वाला है, सब गुणा दा मालक है। ऐसे प्रभु दी सिफत सलाह करनी चाहीदी है। परमात्मा दे प्यारे अमृत वेले दिन रात परमात्मा दी सिफत सलाह करदे हन। धन गुरु नानक साहिब जी दा पावन बचन है, नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। भगत नाम देव जी राग भैरू विच बख्शिश करदे हन। जिवें भुखे मनुख नूं अन्न प्यारा लगदा है, प्यासे मनुख नूं पाणी चंगा लगदा है, माया विच गलतान मनुख नूं अपना ही परिवार चंगा लगदा है, लोभी

प्रभात तू है ही गावणा, जीय जंत सरबत नाव तेरा त्यावणा। इस पौड़ी दी व्याख्या कीती सी ज्ञानी दिलबाग सिंह होरा। प्रभु दे गुण गायन कीत्या ऐसा सुख मिलता है जो परलोक विच वी नाल जांदा है। तांते फिर मन दी यही इच्छा हुंदी है कि दिने राती उस परमात्मा नू त्योंदे रहिए, चितवदे रहिए। दिन भी गावाओ, रैनी गावाओ, गावाओ सास सास रसनारी। सत संगत में विसास हुए हर जीवत मर्त संगारी। सरवण करदे आं भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

दिन पी गावो रैनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास हुए हर जीवत मर्त संगारी। आप जी सरवण कर रहे सो भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया।

मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जति सदावे जुक्त ना जाने छड़ बहे कारबार, सबको पुराया प्यो।